0: मतलब 8 घंटे पहले, 8-10 घंटे पहले मैं चेंगी भी था, ठीक है, जो मजे किए मैंने एयरपोर्ट बटरफ्लाई देखे, पॉड्स देखे, टर्मिनल देखे, जूल देखा, खाना खाया, घूमा मस्त, और सनी, एवरीथिंग वाज सनी. फिर मैंने एयरपोर्ट पे ये नज़ारा देखा वेदर पे, मैंने बोला कि ओके अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो जो सनलाइट ग्रीन और वो सब कुछ है ना, वो इधर कुछ दिखने वाला ही नहीं, इधर मेरे को सब कुछ ग्रे दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को सब कुछ वाइट ग्रे ब्लैक यही दिख रहा है. कोई अगर मेरे को तभी कहता कि तेरे को ये जो सीन दिख रहा है ना, दिस इज जस्ट वन पैलेट, दिस इज वन जस्ट वन
1: पैलेट, वन पैलेट करेक्ट,
0: और तेरे को इतने पैलेट मिलेंगे कि तू खुद डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, मैं शायद नहीं मानता उसको, बट आई एम रियली हैप्पी कि
1: मेरे
0: हाँ कि मेरे को ऐसे देखने को मिलता है. जब भी रेंगेटी की स्ट्रीट से अपन फील्डिंग की तरफ जाते हैं ना,
1: हाँ,
0: तो जब भी शाम के टाइम में सनसेट दिखता
1: है, ओहो हो,
0: तभी वो रास्ता देखने का
1: बहुत अच्छा है. वहाँ पे कभी कभी ड्राइव करने में इशू होता है क्योंकि सन एकदम सामने आ जाता है.
0: But then you have to observe the colors.
1: I know, beautiful. और एक और बात बतानी मुझे तुझे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट एक गाना चला दे पहले.
0: अच्छा. आज ओके ठीक है, मैं शुभ का गाना बजाता हूँ.
1: किसका?
0: शुभ.
1: शुभ.
0: शुभ.
1: हाँ.
0: आर्टिस्ट है.
1: आर्टिस्ट है.
0: पंजाबी गाने गाता.
1: ओके बजाइए.
0: ठीक है, उसका गाना बजाता हूँ. आई थिंक फेल फॉर यू. ठीक है, चलो सुनते.
1: फेल फॉर यू.
0: फेल फॉर यू.
1: वाह, ये तो इंग्लिश के आर्टिस्ट लग रहे हैं.
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, ये कुछ पंजाबी गानों का ये इट्स अ थिंग कि
1: एक लाइन इंग्लिश की गुस्सा दो.
0: वो नहीं, वो तो होता ही है, बट गाने का टाइटल इज इंग्लिश.
1: अच्छा. बट गाना पूरा पंजाबी.
0: गाना पूरा पंजाबी है.
1: ठीक.
0: जैसे करण औजला का गाना, गाने का नाम है, गाने का टाइटल है बॉयफ्रेंड, बट गाना शुरू होता है अबाउट अ गर्ल बीइंग सैट डाउन बाय हर पेरेंट्स, और वो उसको लड़कों की फोटोज दिखा रहे हैं.
1: अच्छा.
0: कि ये पसंद आया क्या, वो पसंद आया क्या, वो पसंद आया क्या. एंड द एंटायर सॉन्ग इज दैट गर्ल सिंगिंग टू हर मदर एंड फादर एंड एवरीबॉडी दैट आई हैव अ आई लाइक समवन.
1: अच्छा.
0: इसीलिए गाने का नाम है बॉयफ्रेंड.
1: बॉयफ्रेंड.
0: ठीक है, इंग्लिश. एंड देन देन शुभ का देयर इज वन सॉन्ग मुझे पसंद है, मुझे काफी पसंद है. गाने का नाम है वन लव, लेकिन उसमें गाने का इंग्लिश का एक वर्ड नहीं है उसमें.
1: अच्छा, एक प्यार है ना उसका.
0: हाँ, मतलब
1: पर कुछ तो होगा ना एक प्यार से रिलेटेड.
0: गाना है. हाँ, मुझे पता नहीं, मीनिंग पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं अभी तक.
1: अच्छा.
0: बट इट्स सो दैट्स द ट्रेंड. सो ये गाने का नाम है फेल फॉर यू.
1: फेल फॉर यू. ठीक है.

0: All right. So that was the song.
1: That was the song.
0: That was the song.
1: Haan, but I understood why it's called Fell for You.
0: Okay. ठीक है मेरे को अब तक गाने का मीनिंग नहीं मालूम बट
1: मतलब
0: बट आई अंडरस्टैंड
1: वो बोलता है ना कि मैं मतलब आई एम काइंड ऑफ द लिरिक्स काइंड ऑफ हिट द सेम सेंटेंस
0: राइट अभी जैसा वो एबी डिलॉन का गाना
1: ठीक
0: है एक्सक्यूजेस
1: एक्सक्यूजेस
0: ठीक है इंग्लिश गाना नहीं है वो ऑलराइट बट गाने का टाइटल एक्सक्यूजेस है सो है ट्रेंड है ये
1: ओके कूल अब मैं तेरे को जो बात बताने वाली थी हाँ तो जब मैं पामी आई थी तो उससे पहले मतलब सबसे पहले व्हेन आई केम टू न्यूजीलैंड इन 2020 आई लैंडेड इन क्राइस्टचर्च सो व्हेन आई वाज लैंडिंग इन क्राइस्टचर्च लिटरली तो मैंने प्लेन से आप देखते हो ना कि कैसा लग रहा है अब नई कंट्री में आया
0: हूँ मेरे को विंडो सीट मिला नहीं था आई हैव नो आईडिया
1: अच्छा मेरे पास विंडो सीट था तो मैं देख रही हूँ कि कैसे है नीचे यू नो सब कुछ मुझे लिटरली आई कुड सी अ रिवर एंड द रिवर वॉज लिटरली ब्लूइश और लिटिल बिट ब्लूइश और ग्रेश एंड वाज सो क्लीन इट वाज सो क्लीन आई कुड सी फ्रॉम द टॉप इट वाज सो क्लीन वाइका मारेरी
0: वीव पैटर्न रिवर
1: यस वीव पैटर्न रिवर
0: उसके ऊपर है ना रिसर्च हो रहा
1: है अच्छा
0: हाँ
1: ओके
0: यू गो ऑन फिर मैं बताता हूँ
1: ओके तो रिवर फ्लो कर रहा है ऐसे करके और आसपास बहुत ब्यूटीफुल पेड़ है फेब्रवरी का टाइम है और हम ऐसे लैंड करें तो मुझे ऐसा लग रहा है यार ये तो पेंटिंग है हम पेंटिंग के अंदर लैंड कर रहे हैं मतलब इट वाज सो ब्यूटीफुल
0: मेरे को इसीलिए पता नहीं है एज इन उस टाइम पे मेरे को इसलिए पता नहीं चला था बिकॉज मुझे सीट मिली थी एकदम लास्ट कोपचे की जिसमें विंडो नहीं था तो मैं एकदम ऐसा घुट के बैठा था मैंने बोला था मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को नींद आ रही है जब मैं प्लेन में घुसा था तो मेरे को सीट पता चली मेरे को तो लगा था कि हाँ ये सीट कुछ ज्यादा ही क्लॉस्ट्रोफोबी लग रही है बट मैंने बोला मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने वो एसी का वेंट अपनी तरफ किया जैकेट लिया और सो गया मैं फिर बाद में कब उठाया जब भी अनाउंसमेंट हुआ कि अभी लैंडिंग की तैयारी हो रही है क्योंकि बगल में जो बंदा बैठा था वो भी मोस्ट लाइकली वो भी इंडियन ही था
1: अच्छा।
0: लग रहा था मेरे को तो वो पता नहीं कुछ तो घिचमिड़ कर रहा था तो उसके हिलने डुलने से मैं उठ गया था एंड मेरे को पता था कि हाँ अभी उतरने का टाइम आ गया अपना अभी अपन उठते हैं बस सो आई डिड नॉट सी द लैंड वाइल लैंडिंग
1: ओके कभी तेरे साथ ऐसा हुआ ऑफ टॉपिक बट कभी तेरे साथ ऐसा हुआ है कि तेरे को एयर होस्टेस उठाने आई है कि बस अब खत्म हो गई है ओके
0: उतना कभी ऐसा हुआ ही नहीं
1: मेरे साथ दो बार हुआ ऐसा एक बार इंटरनेशनल फ्लाइट में एक नॉन डोमेस्टिक फ्लाइट में तो आई वेंट टू अ कंट्री इन अफ्रीका आई वेंट टू केन्या या एंड आई वाज कमिंग बैक एंड आई वाज सो टायर्ड because I was so busy and moving around मैं काम से गई थी फिर उसके बाद थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो गया तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा tired हो गई

0: तो जब मैं आई तो मतलब आई वॉज स्लीपिंग कि फ़ोन बंद है, सब बंद है, सो जाओ। और आई थिंक मेरे को ये भी नहीं पता वो खाना कब लेकर आई और कब लेकर चली गई। लाइक आई डिड नॉट इवन टेक द फूड बिकॉज आई वॉज स्लीपिंग, लाइक मतलब प्रोबेबली आई वॉज स्नोरिंग एंड स्लीपिंग मस्त एकदम। विंडो सीट मिला था, मैं सो रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। और दिल्ली में लैंड हो गया प्लेन, मतलब मैं वापस आ रही थी, वो लैंड हो गया एंड आई डिडंट रियलाइज कि वो लैंड हो गया। फाइनली एयर होस्टेस हैड टू कम एंड टेल मी कि
1: मैडम उठ जाओ।
0: हाँ मतलब मैंने देखा मेरे आसपास की सीट खाली हो रही है, मतलब दो चार लोग थे प्लेन में वो भी जा रहे थे, तो यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया।
1: नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, प्लेन में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ मेरे साथ,
0: क्योंकि आई ऑलवेज पुट माई सीट बेल्ट ऑन, आई कीप पुटिंग माई लाइक कीप माई सीट बेल्ट ऑन ऑलवेज। तो ऐसा है नहीं कि मुझे दोबारा से लगाने की जरूरत पड़ेगी बट टेक ऑफ हो रहा है या फिर लैंडिंग हो रही है, तो लगा हुआ है, मैं सोई हुई आराम से मस्त एकदम।
1: गोइंग ऑफ टॉपिक, मेरे को कल एक भलता सपना आया, पता है?
0: भलता, व्हाट इज भलता?
1: भलता मतलब अजीब।
0: अजीब क्या सपना आया?
1: ओके सो जब भी वो मार्वल यूनिवर्स का जो ट्रेंड था ना, वो जो फेज था ना मार्वल यूनिवर्स का, आयरन मैन एंड दिस एंड दैट, वो सब हल्क वल्क सब कुछ, तो हम लोग मार्वल मूवीज रेगुलरली देखते थे। मतलब मार्वल मूवी देखने का ही देखने का, ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरी मूवी नहीं देखते थे, हम दूसरी मूवीज भी देखते थे, हम अच्छी मूवीज देख
0: भाई की मूवी को छोड़ के तुम सब देख रहे
1: हो। अरे भाई की मूवी भी देखी हम लोग ने। हाँ क्योंकि तभी कुछ और था नहीं।
0: अच्छा।
1: और हम लोग शिफ्ट हो गए थे, मैं चला गया था बदलापुर, वो आ गया था अंबरना, एंड वी वर लाइक यार इधर कुछ है भी कि नहीं है कि हम लोग खाली मतलब जाके नदी में बैठने गए। तो तभी टाइगर जिंदा लॉन्च हो गई थी।
0: टाइगर जिंदा ये कौन सी मूवी है?
1: भाई की मूवी है। नहीं नहीं हाँ टाइगर जिंदा लॉन्च हो गई।
0: एक तो टाइगर तो आई नो।
1: हाँ तो टाइगर जिंदा है, उसका सीक्वल है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि टाइगर में दिस वाज अ क्लिफहैंगर कि टाइगर टपक गया।
0: अच्छा टाइगर मर जाता है।
1: हाँ बट दैट वाज अ क्लिफहैंगर।
0: ओके
1: तो उसका क्लिफहैंगर तो उसका सीक्वल आया टाइगर जिंदा
0: है। जिंदा है जिंदा है
1: जिंदा। एनीहो सो दैट वाज द टाइम व्हेन We would wait, और तभी ऐसा regular Marvel movies आती थी, so this was kind of a highlight for us.
0: अच्छा।
1: तो मेरे को सपना आया कि Marvel का कोई नया पिक्चर निकला है।
0: अरे वाह।
1: और मैं और मदन हम लोग जा रहे हैं अभी पिक्चर देखने को, और मैं खड़ा हूँ मेरे घर पे इधर न्यूजीलैंड में।
0: अच्छा।
1: और मैं मस्त में बाहर देख रहा हूँ और मैं उसको बोल रहा हूँ कि अरे क्या मस्त कलर है आज। क्या मस्त कलर दिख रहा है आसमान में। और मैरी बोल रहा है तू टाइम पे निकलने वाला है कि तू खाली आसमान देखता रहेगा। बोला हाँ हाँ निकलता एंड देन बस खत्म, वो सपना खत्म हो गया।
0: ओके सो बेसिकली सपने में तो मूवी देखने जा रहा था बट न्यूजीलैंड के स्काई के कलर्स ने तुझे इतना अट्रैक्ट कर लिया कि तू मूवी लेट हो गया मूवी के लिए।
1: नहीं
0: मतलब होते रह गए।
1: वो उधर है
0: और तुम दोनों मूवी देख रहे हो। हाँ ऐसा होता है ना,
1: जाने वाले अभी
0: ऐसा होता है थिएटर में। एनीवे यू प्ले अ गेम, प्ले अ सॉन्ग एंड देन आई विल टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग।
1: अच्छा
0: ऑन दिस।
1: अच्छा कौन सा गाना बजाओ?
0: कोई गजल बजा दीजिए।
1: जाएगा नहीं ये।
0: What?
1: इसके साथ जाएगा नहीं।
0: किसके साथ नहीं जाएगा? तेरी पर्सनालिटी के साथ।
1: एक मिनट क्या?
0: किसके साथ नहीं जाएगा गजल?
1: अभी जो गाने बज रहे हैं ना उसके साथ गजल बैठेगा नहीं बीच में।
0: अरे तो कोई थीम थोड़ी ना है।
1: ओके सो अनदर पंजाबी सॉन्ग। ये गाना मेरे को एक्चुअली पसंद है।
0: अच्छा
1: अगेन गाने का टाइटल है हे लव।
0: अब देखते हैं उसमें क्या है।
1: ठीक है सूखे का गाना।
0: ओके
1: हे लव।
0: चलो ठीक है सूखा सूखा ही लव।

0: सो इस गाने में मुझे हे लव समझ नहीं आया.
1: ओके.
0: मतलब कि जो भी गाने के लिरिक्स थे उसमें ऐसा हे लव जैसा कुछ समझ नहीं आया मुझे.
1: हे लव मतलब हे.
0: हे लव. हाँ मुझे समझ में आया. मतलब इंग्लिश
1: बुला रहा है.
0: हाँ लेकिन उस गाने में नहीं बुला रहा. एग्जैक्टली. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से.
1: अच्छा.
0: सो प्रोबेबली नॉट ऑल सॉन्ग्स आर टाइटल्ड वेरी वेल.
1: ये नहीं मालूम. वैसे आई हैव अ थ्योरी.
0: या
1: आई हैव अ थ्योरी बिहाइंड दिस कि द रीजन व्हाई इट ट्रेंड है कि गाना पंजाबी है लेकिन टाइटल इंग्लिश है. इसका रीजन ये है कि ये जितने भी गाने हैं इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो हीरोइन है वो भारतीय नारी तो नहीं लग रही. मतलब आई मीन दिस ना.
0: तो क्या हो गया?
1: तो मतलब ये हो गया कि उसको शायद से पंजाबी नहीं आती रहेगी ना.
0: अच्छा.
1: तो उसको समझाने के लिए कि गाना क्या है बस इंग्लिश टाइटल दे दिया कि गाने का द गाना है इज अबाउट लव या फिर गाना इज अबाउट आई फेल फॉर यू.
0: आई फेल फॉर यू फिर भी मतलब थोड़ा सा मीनिंग जा रहा था वहां. पर इसका नहीं जा रहा. बट एनीवे लेट्स नॉट यू नो डिस्करेज देम.
1: नहीं नहीं आई एम
0: वो इंग्लिश में रखें हिब्रू में रखें हमें क्या जा रहा है.
1: कोई फर्क नहीं. मेरे को गाने पसंद है मैं सुनता हूं
0: बस.
1: सो ये गाना मेरे को पसंद है. एंड देन देयर इज आल्सो अनदर सॉन्ग बाय द सेम गाय अट्रैक्शन. वो भी पसंद है मेरे को.
0: अरे वाह. अब वो नेक्स्ट सॉन्ग क्या
1: है? नहीं वो नहीं बजेगा. वो शायद अगली बार बजेगा. मैं
0: ओके. ब्रेक लेने का टाइम हो गया. आई थिंक
1: हाउ इज दिस हैपनिंग. हाउ आर यू कीपिंग द टाइम?
0: सी सीख रहे हैं हम समय के साथ.
1: अच्छा. ऑलराइट. ठीक है. वन आवर टू ब्रेक.
0: ब्रेक.
2: कम्युनिटी नोटिसेस ऑन एमपीआर.
3: Support groups for prostate cancer, leukemia, lymphedema and head and neck cancers meet monthly at Addis House, 135 Ruahini Street. For more information, contact the Cancer Society on 06-356-5353.
2: Community notices are a free service that anyone can use. Fill out the online form at mpr.nz or call 06-357-935.

0: 1340.
1: Tune in weeknights at 8 p.m. for The Showcase, a chance for NPR to highlight popular episodes, significant milestones, and interesting snippets of station history. That's 8 p.m. weeknights. Check Facebook or Twitter for episode details.
2: Hi, I'm Andy.
3: And I'm Kev. Join us for Palmy Pride,
2: a radio show for the LGBT GlitFab community. News, information, and entertainment.
4: Palmy Pride on Manawatū People's Radio, Tuesdays and Sundays at 9 p.m.
5: Business Daily from the BBC. It's about so much more than business, you know. We cast our nets wider. We talk about money, work, the economy, the office, big policy issues, things that matter to everyone, not just stockbrokers. Not that there's anything wrong with stockbrokers, obviously. For business talk and so much more, Business Daily from the BBC.
4: The BBC World Service. Midnight till 8 a.m. every day on NPR.
6: All right.
7: We are back. तो और सुनाओ, ऑटम के अलावा क्या क्या हो रहा है?
6: ऑटम के अलावा, ऑटम के अलावा तो ज्यादा कुछ नहीं हो रहा.
7: इंडिया में ना आम आ गए हैं, बहुत अच्छे.
6: लगा ही था मेरे को कोई ना कोई किधर ना किधर तो आम का टॉपिक अभी निकलेगा ही निकलेगा. एज एन आई एम नॉट सेइंग इट विद यू. आई एम सेइंग
7: या विद एनीवन.
6: या ठीक है, मतलब जैसा इधर अपने इधर मई का टाइम आ जाता है ना, तो सब लोग बोलते हैं यार आम आएंगे, अभी आम आएंगे.
7: लेकिन आते बहुत लेट है.
6: कभी भी आए, मतलब लोगों का अभी से ही चालू रहता है.
7: ऑफ कोर्स, क्यों नहीं रहेगा यार. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर फ्रूट्स इन द वर्ल्ड.
6: ऐसा नहीं है
7: सॉर्ट, मुझे मैंगोस, ओके, इंडियन मैंगोस.
6: Not all over the world.
7: Not all over the world, as in. Okay, Indian mangoes are sought after in the world.
6: Sure. Okay.
7: तो इंडिया में क्योंकि बहुत, वैसे तो अभी हर सीजन में आपको आम मिलता है, मतलब स्टोरेज का, पर जो टेस्ट है ना, और खासकर वो कुछ वेराइटीज ऐसी होती है जो कुछ दिनों के लिए आती है, मतलब आपके पास मार्केट में वो 15 या 20 दिन के लिए होगी या एक महीने के लिए. छोटे छोटे आम आते हैं, इतने एक उंगली के साइज का आम आते हैं, छोटे, उंगली से थोड़े से बड़े होंगे शायद. वो मोटे मोटे होते हैं और उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है. वो बारिश में आते हैं जब सीजन खत्म हो रहा होता है. बट यू नो वी यूज टू वेट फॉर दैट. तो हम हर चीज पहले हम वेट करते थे, अभी ये आएगा. एक आम होता है उसका नाम होता है सफेदा, वो आएगा. वो थोड़ा सा हल्का हल्का वाइट होता है, बड़ा वाला होता है, बड़ा वाला मैंगो. वो ठीक लगता है, नॉर्मल खा लेते हैं. फिर उसके बाद आता है दशहरी, जो मेरा फेवरेट है. इट इज वेरी स्वीट और टेस्टी होता है, उसको चूस के खाते हैं. फिर आते हैं चौसा, ग्रीन कलर का आम होता है वो, और वो भी खाते हैं. बहुत ऐसे काट के, या फिर
6: लंगड़ा होता है,
7: एक लंगड़ा होता है,
6: एक तोता पाए,
7: एक तोता पाए होता है. और एक ये होता है छोटा वाला, क्या बोलते हैं उसको, इतना आम होता है
6: वो नहीं पता.
7: तोता पाए इज लाइक, उसका शेप बहुत अलग सा होता है ना.
6: उसका जो शेंडी होता है,
7: शेंडी
6: वो तोते की चोंच की तरह होता है.
7: हाँ हाँ,
6: इसके लिए उसको तोता पाए.
7: रत्नागिरी आता है, केसर आता है, कितने आम आते हैं. एक्चुअली इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैंगोस, मैंगो वैरायटी इन द वर्ल्ड.
6: ओके,
7: आई एम नॉट सरप्राइज्ड.
6: सी, इवन आई लाइक मैंगोस. इट्स जस्ट दैट I am not that. I don't fawn over mangoes.
7: Okay.
6: कोई मेरे को खिलाएगा, I'll be very happy. मतलब हाँ, मस्त लगता है खाने को, बहुत अच्छा लगता है मेरे को. But ऐसा नहीं है, I'm not crazy behind it. Fan following नहीं है मेरा ऐसा आम के लिए.
7: आम के लिए, okay.
6: हाँ.
7: तो मिला तो नहीं मिला.
6: Because see, I don't even remember the last time I had hapu samba.
7: What is that?
6: Alfonso mangoes.
7: Alfonso. Okay.
6: Alfonso mangoes are called as hapu samba.
7: Oh my god. Alfonso is better.
6: अरे लेकिन मराठी में उसका हापुस बोलते हैं ना, तो मैं क्या करूँगा उसको?
7: हापुस. हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ. मैंने कहीं देखा है किसी जगह पे.
6: क्या?
7: हापु साम.
6: हाँ, दुकान पे हिंदी मराठी में ही लिखा रहता है. हापु साम. हापु सांबा.
7: Okay.

0: वैसे ऐसा पंजाबी में कुछ अदर मतलब कुछ और वर्ड है क्या आम के लिए?
1: नहीं, आम ही बोलते हैं।
0: अच्छा, ओके।
1: और मराठी में?
0: मराठी में उसको आंबा बोलते हैं।
1: आंबा, तो हम कई बार उसे अम्मी ऐसे ना, छोटी होती है तो अम्मी बोलते हैं, बट ग्रीन वाले जो आम होते हैं ना, अचार वाले जिसकी चटनी भी बनती है,
0: उसको कैरी बोलते हैं।
1: हम अम्बी बोलते हैं।
0: उसको कैरी बोलते हैं।
1: अच्छा, हम अम्बी बोलते हैं।
0: मराठी में उसको कैरी, सॉरी, हिंदी में उसको कैरी कहते हैं, मराठी में उसको कैरी कहते हैं।
1: करी,
0: कैरी,
1: कैरी,
0: कैरी, या
1: ओके। नहीं, हम लोग उसको पंजाबी में ऐसे ही बोल देते हैं, अम्बी, अम्बी।
0: ओके।
1: तो कहने का मतलब ये है कि आम जैसी चीज, अब जैसे मेनी पीपल दे गो टू वियतनाम एंड दे जस्ट लव द कोकोनट वाटर।
0: इधर मिलता है बॉटल में?
1: नहीं, मिलता है, पर वो फ्रेश पीने का मजा ही अलग है ना। तो ऐसे आप जहाँ जाते हो वहाँ का फ्रूट खाओ। तेको पता है मेरे को लीची खाए हुए कितने साल हो गए।
0: हाँ, इधर आई थिंक मैंने एक ही बार खाई है।
1: अच्छा, खाई है?
0: हाँ, वैसे ही इंडियन स्टोर में मिली थी। अभी तो मेरे को याद भी नहीं है कौन से स्टोर से, इंडियन स्टोर से मिली थी। ज्यादा नहीं ली थी मैंने, थोड़ी सी ली थी और बस खा लिया। और फिर
1: फ्रोजन मिली थी?
0: नहीं, फ्रेश।
1: अरे वाह।
0: तभी इंपोर्ट की थी एंड मैं जब इंडिया गया था तभी मैंने खाया रहेगा बस। लीची का आइसक्रीम मेरे को पसंद है। ओके,
1: लीची का आइसक्रीम।
0: ओके, अभी वही बोलने वाला था मैं। ऑकलैंड में ना एक जगह है, अभी मैं वो स्ट्रीट का नाम भी भूल गया। वो स्ट्रीट का नाम मैं एक दुकान से याद रखता हूँ।
1: अच्छा,
0: देयर इज दैट फ्रोजन आइसक्रीम प्लेस व्हाटएवर, वो रात तक खुली रहती है।
1: ओके,
0: इसीलिए मेरे को पता है वहां पे लीची आइसक्रीम मिलती है और वो बहुत अच्छी बनाते हैं।
1: मैंने मैंने ऐसे बहुत सारे फ्लेवर सुने हैं जो
0: वो
1: मुझे
0: रोल आइसक्रीम।
1: अच्छा अच्छा, रोल, वो जो रोल करके
0: रोल करता
1: है। हां, अच्छा अच्छा, आई गेट इट, आई गेट इट। मैंने एक चीज देखी है कि आजकल बड़े अलग-अलग फ्लेवर्स, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स आ गए हैं।
0: किस में?
1: आइसक्रीम्स में।
0: हां,
1: एक माचा, चलो माचा तो ठीक है, मतलब
0: हाँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ द आइसक्रीम्स दीज डेज इज नॉट आइसक्रीम।
1: अच्छा, इट इज,
0: इट इज फ्रोजन प्रोडक्ट।
1: ओके,
0: जैसे येच, ये जो रोलिंग आइसक्रीम जो है ना, इट्स नॉट एन आइसक्रीम, आइसक्रीम नहीं है वो।
1: ठीक है,
0: इट इज फ्रूट पल्प, मे बी क्रीम या फिर दूध, एंड ऑल ऑफ दिस इज मैश्ड बट इट इज डन ऑन अ कोल्ड सरफेस।
1: ओके, हाँ, ताकि वो बार बार जम जाए।
0: हाँ, तो वो जो रादर देन दैट बिकमिंग अ स्मूदी, दैट बिकम्स फ्रोजन पार्ट दैट फील्स लाइक एन आइसक्रीम। होता वो स्मूदी है लेकिन आइसक्रीम नहीं होता वो, इसीलिए यू आर एबल टू गेट अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स। फॉर एनीथिंग टू बिकम एन आइसक्रीम यू हैव टू व्हिप इट सो दैट उसके अंदर एयर ये हो जाए, अमालगमेट हो जाए।
1: ओके,
0: इसके लिए घुमाते हैं उसको, उसको टाइम लगता है,
1: टाइम लगता है।
0: हाँ, लेकिन ये जो बाकी चीज होती है इट्स नॉट आइसक्रीम। जैसे जिलाटो, जिलाटो इज नॉट जिलाटो, इसलिए जिलाटो में आपको बहुत सारे फ्लेवर्स मिलते हैं।
1: मैं कभी गई नहीं जिलाटो।
0: अरे, जगह नहीं है कोई,
1: मतलब मैंने कभी खाया नहीं जिलाटो।
0: हाँ, तो इसीलिए देयर आर अदर फ्लेवर्स।
1: ओके,
0: ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम में फ्लेवर्स नहीं है।
1: एक मैंने एक बार बहुत अजीब सा फ्लेवर खाया था, गुआवा आइसक्रीम।
0: Okay.
1: मुझे लगा, मैंने मंगवा तो ली, लगा यार मैं खा पाऊंगी क्या नहीं। एंड एक और चीज थी, गुआवा आइसक्रीम विद कोक सिरप। कोक, कोक होती है ना हमारी,
0: साउंड्स हॉरिबल,
1: साउंड्स हॉरिबल, बट हमने खाई। and it was surprisingly

0: हिस्ट्री।
1: टेल मी, ये दिल्ली में मिला था?
0: हाँ, तो
1: ओके, नहीं ठीक है, अच्छी बात है।
0: अरे टेस्टी थी।
1: आई एम श्योर, जैसे दूध सोडा भी टेस्टी होता है।
0: दूध सोडा हाँ लोग पीते हैं।
1: हाँ, ऑफ कोर्स
0: लोग पीते। वो कोक सोडा पीते हैं।
1: व्हिच?
0: ओके ठीक है, अभी
1: दूध कोक,
0: दूध कोक, वो कहते शक्ति आ जाएगी और ठंडक भी आएगी।
1: हाँ, शक्ति आएगी और ठंडक भी आएगी।
0: हाँ, अब बताओ कौन सा गाना सुना रहे हो
1: अभी? भिक्की कौशल का एक गाना है।
0: ओके वाओ।
1: बैड न्यूज करेंगे, एक पिक्चर है।
0: बैड न्यूज, ओके।
1: उसका गाना है जानम।
0: जानम जानम देख लो।
1: नहीं, वो वीर जरा का गाना है। बहुत अच्छा गाना है।
0: नहीं, वो उतना अच्छा नहीं लगा रहे हम
1: नया
0: कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ओके
1: ऑलराइट।

0: तो ये गाना मतलब ठीक है, it was very slow.
1: I like the singer.
0: Who's the singer?
1: बहुत ट्रेंड में आजकल.
0: क्या नाम है?
1: विशाल मिश्रा.
0: Okay.
1: मुझे इसका आवाज अच्छा लगता है.
0: क्यों?
1: वो अपनी आवाज को बहुत अच्छे से मॉड्यूलेट कर पाता है.
0: ओके, मतलब डिपेंडिंग ऑन द सॉन्ग, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉन्ग.
1: यप.
0: वाओ.
1: और मेरे को ऐसा लगता है.
0: तूने अभी तक कौन से उसके वो देखे हैं रिजल्ट, मतलब कौन से उसके ऐसे वो देखे हैं गाने?
1: देखे
0: मतलब सुने.
1: अच्छा,

0: our beloved Ranveer Kapoor.
1: Oh my god.
0: उनकी एक पिक्चर आई थी, एकदम बल्ती पिक्चर आई थी.
1: बल्ती?
0: हाँ.
1: कौन सी?
0: Animal.
1: Oh yeah yeah, that was Balti.
0: Hmm.
1: Whatever Balti is.
0: Yeah. So Animal is Balti.
1: So that's what I'm saying.
0: Yeah.
1: Ki whatever Balti is, it actually sounds ki it yeah. is apt for that movie.
0: Yeah. उस पिक्चर में एक गाना.
1: ठीक
0: है. गाने का नाम है पहले भी मैं. रोमांटिक गाना है.
1: हाँ, पहले भी मैं. हाँ हाँ, याद है मुझे.
0: नाइस सॉन्ग.
1: अच्छा सॉन्ग है वो.
0: अच्छा गाना.
1: वो इन्होंने गाया?
0: या वो इन्होंने गाया.
1: अच्छा, विशाल
0: मिश्रा.
1: मिश्रा.
0: ओके. एंड देयर इज दिस वन सॉन्ग, मतलब नया गाना नहीं है, बहुत पुराना भी नहीं है, बट समझ ले 3 या 4 साल पुराना रहेगा. एंड आई केप्ट फीलिंग दैट ये गाना अर्जुन कनुंगो, देयर इज दिस आर्टिस्ट, सिंगर है, पॉप आर्टिस्ट है, उसने गाया है.
1: अच्छा.
0: एंड आई केप्ट फीलिंग कि यार सही है, अगर अर्जुन ने गाना गाया तो अच्छी बात है, गुड. मतलब मेरे को पता नहीं था वो बॉलीवुड में भी गाना गाता है. ही इज एक्चुअली वो अंग्रेजी गाने बनाता है, हिंदी भी गाता है, बट वेस्टर्न
1: ज्यादा है.
0: तो मेरे को लगा था सही है, ठीक है. बट नहीं, दैट सॉन्ग वॉज ऑल्सो और इज ऑल्सो सॉन्ग बाय विशाल मिश्रा. So Vishal Mishra reminds me of Arjun, and Vishal Mishra also reminds me of Ash King. But jab hi I listen to Vishal Mishra, I like listening to Vishal Mishra.
1: Okay, matlab usi ke song sunne ka bar bar man karta hai?
0: Nahi, aise nahi bolunga. It's just that like I said, wo modulate bahut acche se karta hai. Wo
1: वो एक एक वर्ड को समझता है.
0: ये बोलो क्या? हाँ,
1: ये. और अब मतलब ऐसा होता है कि कुछ सिंगर्स जो होते हैं वो गाना गा रहे हैं, और कुछ सिंगर्स जो होते हैं वो गाने का जो मीनिंग है उसके इमोशंस के साथ, मतलब इमोशंस के साथ गा रहे हैं, तो द मीनिंग कम्स आउट वेरी वेल.
0: देयर इज दिस वन थिंग व्हिच आई डोंट रियली लाइक अबाउट mainstream movies या movie के गाने.
1: अरे हाँ, आजकल तो
0: नहीं. there is this one particular thing, और ये ऐसा नहीं कि अभी से ही हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है. I don't know why that is. कि कोई एक अच्छा सिंगर है, उससे गाने गवाएंगे, फिर उसी के गाने चलते रहते हैं. ठीक है, वो गाने बहुत अलग अलग के गाएगा, अलग टाइप के गाएगा, बट for a period of say 5, 7, 10, 12 years बस उसी के गाने चलते रहते हैं. गाने बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए तो वो ट्रेंड में रहता.
1: Exactly.
0: And then suddenly वो फिर बंद हो जाता. And
1: क्या?
0: Then some singer.
1: Singer.
0: And then suddenly
1: he takes a break ना.
0: नहीं. And then suddenly a new singer is in trend now. जैसे,
1: I don't know.
0: अब जैसे जैसे थोड़े टाइम पहले तक मोहित चौहान वाज एवरीवेयर, ठीक है. उसके बाद में अरिजीत सिंह वाज एवरीवेयर.
1: यप.
0: ठीक है, अभी अरिजीत सिंह इज नॉट दैट मच, उतना ट्रेंड में नहीं है. ठीक है, जितना पहले था. ठीक है, अभी विशाल मिश्रा का ट्रेंड शुरू हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है. अभी तक आया नहीं है वहां पे,
1: पर जैसे तूने बताया ना कि वो जैसे गायब हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद.
0: एंड इट हैज नथिंग टू विद द सिंगर्स,
1: इट इज टू डू विद देयर
0: इंडस्ट्री. राइट. माय क्वॉम इज और ये मैं पहले बोल चुका हूँ, माय क्वॉम इज मेरे को ऐसा लगता है कि अ गुड सिंगर डेवलप्स with his age, his singing matures with his age.
1: I would say the same for an actor.
0: Same for an actor.
1: क्योंकि artist हो ना आप.
0: Right.
1: तो आपको सीखना पड़ता है, आपको break लेना पड़ता है.
0: हाँ, अभी जैसे KK, ठीक है, वो जब भी आया था तभी वो जिस तरह से गाना गाता था, ठीक है, and then towards the

0: पीक, मतलब एब्सोल्यूट पीक द इमरान हाशमी फेस. उस तरह से वो वाले गाने उसने जिस तरह से गाए हैं, दे आर वेरी डिफरेंट. बट देन यू कैन सी कि हाउ ही हैज मैच्योर्ड. पहले भी ऑफ कोर्स पहले भी बहुत अच्छे गाना गाता था, बट देन द सिंगर डेवलप्स अ फ्लेवर, राइट.
1: और एक यू नो जो उसके श्रोता होते हैं, जो उसको सुनने वाले होते हैं, वो पहचान जाते हैं,
0: राइट.
1: और उनको समझ में आता है कि अभी क्या इमोशंस है. इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक सॉन्ग में ऑफ कोर्स सब कुछ जरूरी है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा जरूरी है, लिरिक्स जरूरी है, बट जो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंगर होता है ना, जो भी चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में गा रहा हो, बट यू कैन समहाउ अंडरस्टैंड द इमोशंस.
0: यस, इसीलिए काफी बार काफी सारे गाने दो अलग सिंगर से गवाए थे.
1: अच्छा, जस्ट टू एक्सपेरिमेंट.
0: हाँ, ये नहीं पता एक जस्ट टू एक्सपेरिमेंट और व्हाटएवर, बट होता है ऐसे, बहुत बार होता है. और दोनों गाने बहुत फेमस होते हैं. ऑन टॉप ऑफ माई हेड मेरे को अभी याद आएगा तो मैं याद दिलाता हूँ, एक सलमान खान की पिक्चर थी लकी.
1: हाँ हाँ, याद है मुझे.
0: ठीक है, उसमें थी स्नेहा उलाल,
1: लकी लिप्स एक गाना भी था उसमें.
0: हाँ, तो उसमें एक गाना है सुन जरा,
1: सुन जरा.
0: ठीक है, वो दो दो दो सिंगर्स ने गाया, एक सोनू निगम ने. ठीक है, तो पहले सोनू निगम का फेमस गाना.
1: अच्छा,
0: ठीक है, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलराइज किया ही नहीं गया था, या फिर हुआ नहीं था, या फिर मेरे को मालूम नहीं है कि सेम गाना अदनान सामी ने
1: भी गाया है.
0: आई पर्सनली प्रेफर अदनान सामी का गाना.
1: ओके,
0: आई डोंट नेसेसरीली लिसन टू अदनान सामी सॉन्ग्स, वेरी टैलेंटेड सिंगर अगेन, बट दैट पर्टिकुलर सॉन्ग I prefer listening to the Adnan Sami version.
1: ऐसे बहुत सारे, नहीं ऐसा पहले भी होता था, ये तो बहुत सारे बहुत पुराना ट्रेंड है.
0: हाँ,
1: कि अलग अलग सिंगर से गवाओ और देखो कि, क्योंकि हर किसी का पिच अलग है, हर किसी की आवाज अलग है और लोगों को पहचान में आती है.
0: हाँ, तो the point that I was making is कि ये जो अब फ्लेवर निकालते हो ना, ये 10 साल हम खाली मोहित चौहान को सुनेंगे.
1: हाँ,
0: और उसके बाद में अपन खाली अरिजीत सिंह को सुनेंगे, और उसके बाद में अपन खाली विशाल को सुनेंगे, और उसके बाद में अपन खाली सोनू को सुनेंगे. Rather than doing this, why not have them sing at the same time? अरिजीत सिंह को नहीं गवाने का मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि
1: he should remain in the scene.
0: हाँ, he should remain, he should stay in the scene. Right. That is how, that is what my point is.
1: No, they do stay in the scene. वो थोड़ा break लेते हैं.
0: नहीं, किधर? Where is Mohit Chauhan?
1: Tell me the last. अभी हाँ. Actually, Mohit Chauhan, हाँ सही बोल.
0: Tell me where is Sonu Nigam?
1: Sonu Nigam. Oh, he has disappeared. That's correct.
0: वही तो मैं कह रहा हूँ. तो it is not the singers.
1: But he was a very, उसका voice बहुत ही unique था.
0: अभी भी अच्छा
1: है.
0: हाँ, अभी भी काफी अच्छा है.
1: हाँ.
0: अभी भी he is very talented.
1: तो
0: ऐसा नहीं बोल सकते अपन.
1: तो आप हमें कौन सा सॉन्ग सुना रहे
0: हैं? अभी मैं कौन सा सॉन्ग सुना रहा हूँ? ओके, कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 आई है.
1: 3 आ गई है?
0: हाँ, 3 भी आ गई.
1: चलो, गुड.
0: अभी नहीं है,
1: टाइम पास
0: हो गया उसको. टाइम हो गया अभी उसको.
1: अच्छा, टाइम भी हो गया.
0: हाँ, टाइम भी हो गया उसको.
1: गुड, टाइम
0: पास. उसका गाना है, और उसका गाना है जानम समझो ना.
1: समझो ना, ओके.
0: तो अपन वो सुनेंगे और उसके बाद में अपने को रैप मारना पड़ेगा.
1: अरे क्या बात कर रहे हैं, टाइम हो गया.
0: हाँ, टाइम हो गया है. तो अगर गाना फिट होएगा तो मैं फिट करेगा, अगर फिट नहीं होएगा तो मोस्ट लाइकली वो गाना अगली बार बजेगा. तो मनावाटू, धन्यवाद फॉर लिसनिंग टू अस. और थोड़ा बाहर निकलो, थोड़े रंग देखो,
1: ऑटम के रंग देखो, पतझड़ के
0: ऑटम के रंग देखो, सेल्फी वेल्फी निकालो. ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच शिल्पी जी आज मिलने के लिए.
1: थैंक यू मल्हार जी, और थैंक यू मानवटू. फिर मिलते हैं हम अगले हफ्ते.
0: फिर मिलते हैं अगले हफ्ते.
1: ओके, बाय.